साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
5: 25? Seriously?

0: लाइका गोल्ड।
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

गावे को गुण वडियाई चार, गावे को विद्या विख विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

लीजिए लता जी और किशोरदा की आवाजों में। सिलसिला फिल्म का था ये गाना, और उससे पहले आपने सुनी जसपाल सिंह की आवाज, गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल और जीवन की हर दुख परेशानियों को एक तरफ हटाता चल। दो गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और जीवन का पूरा पूरा मज़ा ले रहे हैं। और साथ ही साथ मौसम का भी, मौसम कल भी काफ़ी गर्मा गर्म था और आज उससे भी एक दो डिग्री ज़्यादा होने वाला है, लेकिन मज़े उठाइए, अच्छा लगता है ऐसे मौसम में भी। और यहाँ के मौसम की सबसे खास बात क्या है जानते हैं? दिन में चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, रात तो एटलीस्ट ठंडी हो ही जाती है। कल हम निकल गए थे अपने घर के पास, एक लेक है वहाँ चले गए थे, और हमें लग रहा था कि यस मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन वहाँ लेक के किनारे अच्छी खासी ठंडक थी और यकीन नहीं हो रहा था कि दोपहर में जो चिलचिलाती गर्मी थी, शाम को वहीं पर टेम्परेचर इतना कूल हो गया है। लग रहा था एक लेयर पहनी होती तो अच्छा लगता। तो बस ऐसा ही मौसम आज भी है, शायद आज इतनी ठंडक शाम को ना हो क्योंकि दिन में आज ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा है। और जितने भी दिन है, सुन रहे हैं कि मंडे तक है ये मौसम, इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो बादलों का कोई भरोसा ही

0: बदले में आज आपको मिलेंगे 128.15 भारतीय रुपए। लेकिन अगर आप 1000 pounds से ज्यादा SBI के योनो या ब्रांच में जाकर ट्रांसफर करते हैं मनी, तो आपको 75 pounds का वाउचर मिल जाएगा जब भी आप ट्रांसफर करेंगे। और अगर आप 2000 pounds ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिल सकता है 1 gram या मिलेगा 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक जब आप 2000 pounds से ज्यादा मनी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: सकते।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasam.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 0208574 8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: रामकृष्ण हरि, यूके, फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र। दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशा, परंपरा, संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन। भारत से यूके तक एक ही रिदम, एक ही प्राइड। टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org। लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, यूज कोड लाइका10। वाद्य महोत्सव 2026, फील द बीट, लिव द लेगेसी।
11: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
14: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
13: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
13: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
15: ધ વોઇસ ધેટ ટચિસ એવરી સોલ, સ્ટાર એક્સપ્રેસ પ્રેઝન્ટ્સ હરિહરન્સ સોલ ઇન્ડિયા।
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश। एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच

0: यस त्रिशूल फिल्म से था ये गाना और किशोरदार लता जी की आवाज़ों में जिसे आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो स्टेशन से। और आपको बताती चलूं कि ऋतु शर्मा है आपके साथ और ये साथ चलता रहेगा आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: चलिए आपका साथ तो मुझे मिलता ही जा रहा है, ये आपके मैसेजेस बता रहे हैं, तो एक नजर डाले उन मैसेजेस पर।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: सो थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने ढेर सारे संदेश मुझ तक पहुँचाए हैं। और सबसे पहले विजय जी आपका मैसेज पढ़ते हैं, और आपने हमेशा की तरह आज भी एक सोच विचार करने वाली बात कहूँ ये आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है, और उसमें लिखा है कि वक्त पर हाथ छोड़ने वाला हो या हाथ पकड़ने वाला, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, और आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इंडियन आइडल में कल का शो मैंने नहीं देखा है, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ रिकॉर्डिंग्स देखकर काम चला रही हूँ आजकल, क्योंकि कल तो हम घर पर थे ही नहीं, इसलिए वीकडेज में इन चीज़ों को देखूंगी। तो थैंक यू साथ देने के लिए। टोरंटो से उल्लास है हमारे साथ, निवेदनी पटेल पटनी में हमारे साथ हैं और साथ दे रही हैं, थैंक यू निवेदनी। मिसेस चियांग साथ दे रही हैं हमारे साथ हैं। क्रॉयडन से महेंद्र पटेल जी हैं, रोशनी गुड मॉर्निंग, हैरो से महेंद्र जी गुड मॉर्निंग, तोची पनेसर जी गुड मॉर्निंग, जासू जी, मृदु जी, मनीषा शाह गुड मॉर्निंग, अजिंक्य आप भी हमें सुन रहे हैं, फारूक मोहम्मद जी स्वागत है आपका, शरफून बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अर्जुन जी, प्रज्ञा जी, वियाना से अनिल सोनी जी, राजीव पटेल जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और आपने बताया है कि 26th मई को आपकी डॉटर रिचा का 18th बर्थडे है, तो भाई ये तो स्पेशल वाला है और पूरी फैमिली इसके लिए इंतज़ार कर रही है, और सभी परिवार वाले एडवांस में ही, जिसमें उनकी मम्मी अंजना, डैडी राजीव, भाई निखिल, अक्षय, दादाजी डॉक्टर धानजी बाई और दादी सरस्वती बेन जो कि सूरत गुजरात में है, सभी ढेर सारा प्यार ऋचा को दे रहे हैं। तो वही धूमधाम से बर्थडे मनाइए, जब उनका जन्मदिन आएगा हम आपके साथ नहीं होंगे, इसलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे। स्लाव से सुरजीत जी हैं, जैस जी, बेल्जियम से प्रीति जी जो भारत से लौट कर आई हैं और कहती हैं आहा भारत की गर्मी के आगे तो यहाँ की गर्मी कुछ भी नहीं है। सच कह रही हो, मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ इतनी गर्मी है, और वहाँ दिन में रात में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या किया जाए, बस लगता है यहाँ के थोड़े से बादल काश वहाँ जाकर बरस जाए है ना। वंदना गुटका जी थैंक यू, स्वागत है आपका। नरेंद्र भागिया जी आपने भी चार लाइनें हमारे साथ शेयर की, और आपने लिखा है कि अर्ज़ किया है, क्या अर्ज़ किया है कि जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, जरा इस खूबसूरत जीवन को एंजॉय करके तो देखो, किसने जाना कल हो ना हो। बिल्कुल सही बात, स्वागत है आपका भी शो में। अयूब चौहान जी आपका स्वागत है, वंदना गुटका, हरीश खत्री जी, सुनीति, अनीता जी, मिसे शेख, निर्मला सहर, बहुत लंबी लिस्ट है और बाकी के नामों का जिक्र करूंगी, लेकिन फिलहाल सुनवाती हूँ एक और खूबसूरत गाना।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लाल दुपट्टा मलमल का। सबसे पहले इस फिल्म के गाने रिलीज हुए थे और गाने जब इतने ज्यादा हिट हो गए तो सोचा क्यों ना इस पर एक कहानी बिठाई जाए और तब फिल्म आई लाल दुपट्टा मलमल का। और इस फिल्म का हाल भी वैसे ही था जैसे आशिकी। पहले गाने हिट हुए थे और बाद में उस पर कहानी बिठाकर फिल्म बनाई गई थी, लेकिन गाने कमाल के थे। और जानते हैं ये सारे के सारे गाने लिखे थे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर या कहूँ लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी ने। और उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन मजरूह सुल्तानपुरी इस दुनिया को छोड़कर गए थे। 24 मई 2000 में जब उनकी एज 80 ईयर्स की थी, लेकिन उन्होंने बहुत जानी मानी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। आपको याद होगा कयामत से कयामत तक, जो जीता वो सिकंदर, और एक और इनकी फिल्म आई थी दोस्ती, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गाने के लिए तो इन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी जीता था 1965 में। जरूर सुनवाऊंगी ये गाना क्योंकि आज मजरूह सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि है। लेकिन उसके साथ साथ
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: ये है Laika Gold.
0: अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते चले जिन्होंने मैसेजेस भिजवाए हैं। ललित छत्रिसा जी साथ दे रहे हैं, स्वागत है। निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जसवंत्री जी कहते हैं कि कल तो मेरे गुरु जी का शो है रॉयल अल्बर्ट हॉल में, बिल्कुल ज़रूर देख कर आइए। मैं तो कुमार सानू जी से दो बार मिल चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके गीत सुनना और उनको सुनना, तो आप ज़रूर जाइए। और इसके अलावा दिव्या हैरो से हिमांशु पटेल जी, अरुणा जी स्वागत है। हमारी एक और प्रज्ञा है जो हमें सुनती हैं, हंसा वोरा भारती दीदी, और हमारे राजेश जी, सभी का स्वागत है। आप सबके लिए जाता है अगला गीत।
3: Ritu Sharma live on Laika Gold, Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन अगला गीत सुनवाने से पहले आपको याद दिला दें कि इस समर को आप और भी अपना मेमोरेबल बना सकते हैं साउथ हॉल ट्रैवल के साथ। उनके साथ घूमने जाइए, बीचेस को एक्सप्लोर कीजिए, सिटीज घूमिए और अच्छी डील्स पाइए होटल्स और फ्लाइट्स की। आपको उन्हें कॉल करना है 0208-574-8410 पर। ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट है 40 सालों से, जिन्होंने अवार्ड भी जीता है फॉर द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड, मतलब ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ है। तो ज़रूर उनके साथ संपर्क कीजिए और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने टिकट्स बुक कीजिए।
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Whatever you're celebrating, make it a moon pig. Birthdays, anniversaries, big moments, little ones, even the ones you nearly forgot. From heartfelt to hilarious, soppy to savage, you'll find the card that hits the mark every time. And it's easy to personalize to make it properly theirs. Sorted, sent, and delivered right on time. Plus, get 20% off with code JOY20, because everyone deserves a
6: moonpig.com.
5: Terms and exclusions apply.
7: This is Ritu Sharma.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
9: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट TravelHubWorld.com.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
10: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy. Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah sathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. Athwa call karo Mr. B 07860-280655. Sakhna rejo husband ji.
13: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
17: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
18: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
19: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
18: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
20: Be part of a historic grand opening.
21: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
20: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
21: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
20: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
22: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
23: 25? Seriously?
22: Sounds like Ojo time.
23: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
22: Sorry about the wait. How can I help?
23: You can help me celebrate. I won!
24: Feel the fun. Play Ojo.
25: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
4: Like a radio network. Proud hospitality partner. Ragasan. Seven stations. One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.

0: हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो।
1: ये थी किशोर दा और आयशा भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल, जिसका म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने। और आज राजेश रोशन की बर्थडे है, आज 24 मई 1955 में बॉर्न राजेश रोशन 71 ईयर्स के हो गए हैं, जिन्हें कल हमने यादें में याद किया था और उनके बारे में कुछ बातें बताई थी। लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, समय मिला तो कुछ और बातें बताऊंगी। लेकिन फिलहाल
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 107.9 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज IPL में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच है और ये मैच अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 11 बजे से शुरू होगा। मैच का हाल मैं आपको बताऊंगी, आप बस हमें सुनते रहिए।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: Ye hai like a gold.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
9: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
12: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
14: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न Every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
16: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
19: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: डीजे राजेश रोशन के म्यूजिक पर था ये गाना फिल्म तुम्हारी कसम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज राजेश रोशन की बर्थडे है, आज 71 ईयर्स के हुए हैं। मेरे बहुत ही फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है और इनके कुछ गाने हैं जो 90s की फिल्म्स के हैं, मुझे बहुत पसंद है। कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी गाने बनाए हैं 90s की फिल्मों के, बड़े ही पसंद हैं मुझे वो गाने, अक्सर ही सुना करती हूँ। और आज 71 ईयर्स के हुए हैं, उनके सारे फैंस की ओर से उनको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। और उससे पहले आपने लता जी की आवाज़ में सनम बेवफा फिल्म का गीत सुना, जिसमें भी एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनका नाम था महेश किशोर। ज़्यादा फिल्मों में इनका म्यूज़िक नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत चले थे, ये फिल्म भी बहुत हिट हुई थी। और तुम्हारी कसम का गीत सुनकर ढेर मैसेजेस आए हैं। कल्पना कहती है, मेरा फेवरेट गाना है। अरे तो कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ कल्पना जी, स्वागत है आपका। जैस्मीन, आपका भी मैसेज आया है। सपना एंड परेश व्यास जी, मिसेस चियांग कहती हैं ये गाना मुझे पसंद है। और हमारे महेंद्र बजारिया जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और विजय जी का कहना है कि आजकल चिट्ठी कौन लिखता है। सही कहा विजय जी, आजकल कोई चिट्ठी नहीं लगता, आजकल तो लोग पूछते हैं व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर स्माइल नंबर, आजकल तो ये पूछा जाता है। और देखिए, तभी तो ये गाना 78 में लिखा था, और 78 में तो चिट्ठी का चलन होगा ना, चिट्ठी का चलन था। लेकिन आजकल तो इंस्टेंट लेटर्स होते हैं, यहाँ लिखा वहाँ पहुँचा, भाई ज़माना बदल गया है। और इसलिए देखिए गाने भी बदल गए, लेकिन इस गाने में बहुत मिठास थी, और ये मिठास डाली थी राजेश रोशन ने, जिनकी की आज है बर्थडे। और आज मजरूह सुल्तानपुरी की पुण्यतिथि है, इसलिए आज की जोड़ी नंबर वन में मैं उन्हें ही लाई हूँ, उनके लिखे हुए वो गाने जिनमें आवाज है लता जी की। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128.15 भारतीय रुपए, लेकिन योनो ऐप के थ्रू और SBI ऐप के थ्रू तो आपको इन्हें ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप 1000 pound से ज्यादा एवरीडे ट्रांसफर करते हैं तो एवरीडे आपको 75 pound का वाउचर मिलेगा, और अगर आप 2000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1 gram गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco Mobile, get the Samsung Galaxy S26 Ultra with 100 gigs of data for just

0: म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अनामिका फिल्म का ये गाना जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, और आज उनकी पुण्यतिथि है इसलिए आज हम मजरूह सुल्तानपुरी को ही लेकर आए हैं जोड़ी नंबर वन में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो एक गीत तो आपने उनकी कलम से निकला हुआ सुन ही लिया, लेकिन एक और गीत बहुत ही खूबसूरत सुनवाने वाली हूँ। बट उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, और आप जानते ही होंगे कि 6 दशकों तक उन्होंने एज ए गीतकार काम किया है और भारतीय संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 1965 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और उसके बाद 1993 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ बातें ज़रूर उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उनका असली नाम तो असरार उल हसन खान था, और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा के रहने वाले थे, इसलिए जब उन्होंने अपना नाम रखा तो उसमें सुल्तानपुर से सुल्तानपुरी रख लिया और बन गए मजरूह सुल्तानपुरी। बचपन में मजरूह सुल्तानपुरी के पिता नहीं चाहते थे कि वो इंग्लिश भाषा सीखें, इसलिए उन्होंने उन्हें मदरसे में अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन ये मजरूह सुल्तानपुरी को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके दिल में एक शायर था, उनके अंदर एक शायर था। लेकिन पिता की बात मानकर वो मदरसा गए, उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने लखनऊ की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से हकीमी की भी पढ़ाई की, और बाद में शायरी की दुनिया में कदम रखा। बहुत पुराने समय से फिल्म इंडस्ट्री में मजरूह सुल्तानपुरी काम कर रहे थे, और इसीलिए देखिए 1949 में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो उस जमाने के हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ एक कविता पढ़ने के कारण 2 साल तक मुंबई की जेल में भी रहना पड़ा था। और जेल में रहने के दौरान उनके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। अभिनेता राज कपूर उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और उन्होंने राज कपूर से मदद लेने के लिए साफ इनकार कर दिया। आपको याद होगा इनका एक गाना शाहजहां फिल्म जो 1946 में आई थी, जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। ये गाना कितना लोकप्रिय है, ये गाना ज़रूर हमारे बहुत सारे साथियों का फेवरेट होगा, जिन्हें आप विंटेज गोल्ड में कभी कभी सुनते होंगे। ये गाना भी इन्हीं का गाया हुआ था, और इनकी इच्छा थी कि अंतिम यात्रा पर ये गाना बजाया जाए। एक और गीत इनका यादगार है, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। मैं वो गाना बजाने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो गाना कल ही किसी ने बजाया है, तो सोचा आज नहीं किसी और दिन सुनवाऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक और गीत सुनवाती हूँ जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, जिसे और लता जी ने गाया है। पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो भाई ये बिल्कुल आप ही के लिए है। किशोर कुमार के फैन जा सकते हैं, एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है जिसमें केतन, इंद्राणी, संजय गा रहे हैं, साथ ही साथ 515 बैंड होगा, और ये होने जा रहा है 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल एसेक्स में। इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका गोल्ड रेडियो।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: क्या खूबसूरत गाना है ये फिल्म तलाश से, और ऐसे ही और भी बहुत सुंदर गाने मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकले हैं। और आज मैंने एक्चुअली कुछ और गाने चूज़ किए थे, लेकिन जब यहाँ आई तो पता चला कि वो गाने ऑलरेडी प्लेड हो चुके हैं, तो फिर मैंने दूसरे गाने चुने। लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर उन गीतों को सुनवाऊंगी। और आज हमने जोड़ी नंबर वन में मजरू सुल्तानपुरी को लाकर उन्हें याद किया, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, हमेशा जिसने जो भी मकाम पाया है उसके लिए संघर्ष किया ही होता है। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी की दो लाइनें संघर्ष करने वालों के लिए एक मिसाल हैं। और उन्होंने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कमाल है। आज मन तो जा रहा है कि कुछ और गाने उनके बजा दूँ, देखती हूँ समय मिला तो ज़रूर बजाऊँगी। लेकिन फिलहाल तो यही थे दो गाने आज की जोड़ी नंबर वन के।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा।
0: आप लोगों का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो भाई आपको बता दें कि लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है। यस, उसका टाइटल है डोमेस्टिक वॉयलेंस और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं YouTube पर, Spotify पर, Amazon पर और Apple और जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर जाकर आपको सुनना है तो आप वहाँ सुन सकते हैं।
2: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: At Tesco Mobile, get the iPhone 17 with all-day battery life and 12 gigs of data for just £36.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £162. Plus, you'll get £30 worth of club card points worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card and 36-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration. Terms at tescomobile.com/terms.
4: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकिट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
10: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall. at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
14: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
15: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
14: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at likearadio.com and the Like a Radio mobile app.
18: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

ये लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में था। ये गाना दो रास्ते फिल्म से और पहला गीत खुद गर्ज फिल्म से लिया था और ये है लॉन्ग वीकेंड। और हमारे नरेंद्र पाठक जी कह रहे हैं कि इस लॉन्ग वीकेंड का मजा आ रहा है आपके साथ, तो थैंक यू सो मच। मैं जानना ही चाहती थी कि आपको मजा आ रहा है या नहीं। वैसे तो आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। फारूक मोहम्मद जी क्या बात है, गीत पसंद कर रहे हैं। और मिसेस चियांग कहती हैं कि हमारा भी दिल बहलता है आपके आ जाने से। क्या बात है, ऐसे मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वत्सला जी। रानी जी इस्लाम से कहती है मैं बहुत बिजी थी, मैसेज नहीं लिख पाई तब

0: रविवार को मनाते हैं और इस दिन गंगा माँ की पूजा की जाती है, क्योंकि हम लोग गंगा माँ को न सिर्फ एक नदी बल्कि साक्षात देवी और मोक्षदायिनी मानते हैं। गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी पर माँ गंगा की पूजा की जाती है और ऐसा कहते हैं कि जाने अनजाने में जितने भी पाप हुए उन पापों का नाश होता है। हमारे लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी भी है। आप सबको पता ही होगा कि महाराज भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए जब शांति के लिए कठोर तपस्या की थी, तभी गंगा पृथ्वी पर आई थी। और जब गंगा स्वर्ग से उतरी थी तो उसके वेग को थमने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया था। और जिस दिन गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई थी, वही दिन कहलाया था गंगा दशहरा। और ऐसा भी कहते हैं कि आप गंगा नहाने जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे पानी में डालकर स्नान कीजिए। गंग दशहरे पर जो स्नान होता है वो आपका हो जाएगा। तो कल मजे के साथ मनाइए। और भी कुछ बातें होंगी जो जरूर कल के प्रोग्राम में जो हमारे प्रेजेंटर्स होंगे, रवि शर्मा जी होंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज नहीं, कल है गंगा दशहरा। लेकिन फिलहाल तो मैं शुरू करने वाली हूँ अपना 3 वर्ड्स गेम। और 3 वर्ड्स गेम के बारे में आपको बता दूं, जो पहली बार सुन रहे हैं, कि हमेशा ही बॉलीवुड के किसी गाने से शुरू की 3-4 लाइन से मैं 3 वर्ड्स पिक करती हूं और आपको उनकी मदद से गाना पहचानना होता है। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है ख्वाब, दूसरा वर्ड है रात और तीसरा वर्ड है 4। बहुत सुंदर गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ है, 1971 की फिल्म है और आरडी बर्मन का म्यूजिक है। बताइए कौन सा गाना है, ख्वाब, रात, 4। अगर पता है तो मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128.15 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको via SBI branch और उनके ऑनलाइन योनो ऐप और ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना होगा। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप 1000 pound से ज़्यादा ट्रांसफर कराते हैं तो आपको 75 pounds का वाउचर मिल सकता है, और अगर आप 2000 pound से ज़्यादा का ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको मिलेगा 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक जब आप 2000 pound से ज़्यादा ट्रांसफर करवाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो हमारा 3 वर्ड्स गेम चल रहा है, और आपको बता दूं एक बार फिर से, आज के जो 3 वर्ड्स हैं वो हैं ख्वाब, रात और 4। अगर आपको पता है तो बताइए कि ये कौन सा गाना है। और विजय जी कहते हैं कि हम भी सेलिब्रेट करते हैं गंगा दशहरा मॉरिशस में। जी हाँ, हम भी सेलिब्रेट करते हैं गंगा दशहरा, और हमारे यहाँ गंगा दशहरा पर सत्तू खाया जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे सत्तू क्या होता है, और बहुत ही हेल्दी होता है, और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में सत्तू ठंडक पहुंचाता है। शायद चने से बनता है लेकिन अच्छा लगता है, मुझे तो खाने में मज़ेदार लगता है। और कुछ लोग सत्तू की कचौड़ी भी बनाते हैं, पराठे भी बनाते हैं और बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल जैसे सत्तू बनाया जाता है ना, वो खाने का चलन है, मुझे याद है, स्पेशली गंगा दशहरा के दिन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/aldiprice match.
1: Yeah, like a gold.
3: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद

0: यस, हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना जिसमें ओपी नैयर का म्यूजिक था और इन गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, जो थे हमारे जोड़ी नंबर वन में भी और जिनकी आज पुण्यतिथि है। लेकिन आपको बता दें कि जब नासिर हुसैन ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा था तो उनके दिमाग में देवानंद और वैजयंती माला थे, लेकिन देवानंद ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। वैजयंती माला भी किसी कारण से इस फिल्म से आउट हो गई और बाद में शमी कपूर और अमिता को साइन किया गया। और साहिर जी थे इस फिल्म के मेन लिरिसिस्ट, उन्होंने एक दो गाने भी लिखे लेकिन बाद में किसी वजह से उनकी जगह ले ली मजरूह सुल्तानपुरी ने। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना जिसे आप सबने पसंद किया है, थैंक यू। और हमारा थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है तो ज़रूर आपको बताते हैं कि किन्होंने सही सही जवाब दे दिया है।
1: This is like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और फिलहाल समय होता है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के दूसरे गाने को सुनवाने का। और इस गाने की फरमाइश कुछ दिन पहले आई थी, हमारे कुछ साथी इस गाने को सुनना चाहते थे। काफी दिनों बाद आज इस गाने को प्रोग्राम में बजा रही हूँ, शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर, मुकेश जी की आवाज में। ये गाना हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।

0: मुकेश जी की आवाज में हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू लाश, आपने सही लिखा है कि ये गाने में कितनी सच्चाई है। थैंक यू महेंद्र जी, चलिए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अगला गीत सुनाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे किन साथियों ने आज के सवाल, आज के गाने को सही सही पहचान लिया है और उनके नाम हैं वत्सला जी, आपने सबसे पहले गीत को पहचाना है, महेंद्र बाजारिया जी, निशा, उल्लास, मनीषा शाह, अरविंदर जी लैंगली से, दामिनी बहन, फरजाना, दिनेश पोपट जी, प्रीति बेल्जियम से, उमा जी एप्सम से, नरेन पटेल जी, अनिल मालदे, दिव्या जी हैरू से, जॉर्ज पार्क रॉयल से, विजय गुरूरी जी, अर्जुन जी, जयंती भाई वैलिंग बोरो से, उषा कोड़ा जी, तोची जी, फरहीद हुसैन कराची से, हितेश कुमार, कुकी जी, स्मृति जी कैंट से एंड एसएस भोगल, आप सभी ने गाने को बिल्कुल सही सही पहचाना है।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
0: चलिए थ्री वर्स गेम वाला गाना बजाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के नाम कर दूं।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आई। और यही था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
1: Sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai Leica Gold. Leica Gold.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
3: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 107.9 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Leica Gold.
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज के IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स ने खेलते हुए अब तक 18.1 ओवर्स में 8 विकेट गवाकर 177 रन्स जोड़ लिए हैं।
3: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: होली जी आज का साथ बस यहीं तक, अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक, न्यूज के उस पार होंगे अनुराग आपके साथ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
2: ये है Leica Gold
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामास्टर रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखणा रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रात ना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 0786028 0655। सखना रेजो हस्बैंड जी।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ कोई पता चला?
10: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
8: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
12: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
13: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall. at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
13: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
15: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
16: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
15: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
19: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
20: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
21: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
19: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
20: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
22: Feel the fun. PlayOjo.
23: 18 plus, gamble aware.
24: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे संदेशों के लिए। और हमने अभी आपको गाना सुनाया घुंघरू की आवाज़ फिल्म का, किशोर दा और आशा दाई की खूबसूरत आवाज़ों में। उससे पहले गाना आपने सुना था राजकुमार फिल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरडी बर्मन साहब का संगीत था और इस फिल्म में घुंघरू की आवाज़ जिसका आप गाना सुन रहे थे उसमें नजर आए थे विजय आनंद और रेखा जी। और विजय आनंद भाई प्रोड्यूसर हैं तो भाई एक्टर भी बन सकते हैं, और रेखा जैसी को एक्ट्रेस हो साथ में तो फिर क्या है। हालांकि फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही थी, लेकिन फिल्म का ये गाना आज भी है उतना ही प्यारा। आगे बढ़ेंगे और आज के गोल्डन राग का भी इंतजार कीजिए, और गोल्डन वर्ड का तो करना ही पड़ेगा जो कि हम लास्ट में बताएंगे। फिलहाल बिना बातें संगीत ज्यादा, यही है हमारा आज का इरादा। सुनते रहें
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल सकते हैं 128.15। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Three heroes, one mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
3: Wait, are we the heroes?
4: Of course we're the heroes.
2: These snacks are high in protein and ready to eat.
3: Why are you doing the serious voice?
4: Yeah, why are you doing the serious voice?
5: I was trying to make it cooler.
2: Find new corn protein bite snack bags in supermarkets nationwide. Corn, so tasty. Why choose the alternative?
6: Ye hai Laika Gold.
7: Laika Gold.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला। येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Daniel.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी और मुकेश साहब की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का एक गाना सुन रहे थे आप। कल्याण जी आनंद जी का उस दौर में बड़ा ही कमाल का संगीत और ये फिल्म अपने संगीत के लिए काफ़ी चर्चा में रही थी, ऐसा इस फिल्म से जुड़े हुए आर्टिकल बताते हैं। लेकिन अगला गाना है बड़ा ही खास, क्योंकि पल पल है वो दिल के पास। सुनते रहें लाइका गोल्ड की सुपर संडे वाली महफिल।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: किशोरदा की आवाज में हम सबका ऑल टाइम फेवरेट ये गाना है ब्लैक मेल फिल्म का, और इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने, रेखा राखी जी और धर्म बाजी इस फिल्म में नजर आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का भी कमाल का रोल था, और इस फिल्म के सारे गानों के लिरिक्स लिखे थे राजेंद्र किशन साहब ने। और जब मैं गौर कर रहा था, जब गाना सुन रहा था, तो इसमें एक अंतरा है, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, और जब यही सांसें बेकाबू हो जाती हैं तो किस तरह के सुर निकलते हैं, ये हमें अपनी आवाज़ों में समझाया है रफ़ी साहब और लता जी ने। अगले गाने को सुनिए, सांसों का जिक्र इसमें भी है।
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: गोल्डन राग की सुपर संडे वाली महफिल में किशोर दा की आवाज में कव्वाली वाले राग दुश्मन फिल्म का गाना सुन रहे थे। अब अगले गाने के बाद हम आपको बताएंगे आज के गोल्डन वर्ड का खुलासा करेंगे और अगला गाना आपको सुना रहे हैं लता जी और किशोर दा की आवाज में। फिल्म का नाम है गाइड, सुनते रहें। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं लेम्फाई के जरिए करेंसी रेट्स।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.59 पाकिस्तानी रुपीस 373.97 श्रीलंकन रुपीस 444.15 बांग्लादेशी टका 164 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL का 69th मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है मुंबई के राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने 205 रनों का लक्ष्य दिया है, जहां मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 5 ओवर का खेल जो होने वाला है और 37 रनों पर 3 विकेट का नुकसान।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA। लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर। दिस इज द Leica Radio Network।

0: बिल्कुल वाजिब बात है, गाता रहे आपका और हमारा दिल, इसीलिए तो हम है यहाँ पर हैं भाई। गाइड फिल्म का ये गाना लता जी और किशोर दा की आवाज में अभी आपने सुना, और इसी के साथ वक्त आ गया आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए, जिसके लिए आपको जलानी है अपने दिमाग की बत्ती। वो आज का गोल्डन वर्ड है हम तुम। वैसे आपको थोड़ी सी रियायत देते हैं, छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, हम तुम के साथ हम तुम्हारे हम तुम्हारी भी एक्सेप्टेड है। सुनते रहे अगला गाना, बड़ा ही प्यारा लता जी की आवाज में, साथ ही फिल्म का।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation,
3: in Dubai.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald Packaging.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour line.
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: On Rug with Golden Rug.

0: हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे नया इतिहास रचाएंगे। एसपी बालासुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में एक दूजे के लिए फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, और ये गाना हम तक पहुंचाया था रवि जी, सौरभ, पंकज और नलिनी जी ने। आप सभी का शुक्रिया। और पहला गाना जो हमने आपको हीरो नंबर वन मूवी से सुनाया था विनोद राठौर और साधना सरगम जी की आवाज़ों में, ये गाना हम तक पहुंचाया है सपना जी फ्रॉम अक्स ब्रिज से। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है, जिसके लिए आपको जलानी है अपनी दिमाग की बत्ती, वो है हम तुम। और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो हम तुम की जगह पे तुम्हारा या तुम्हारी, तुमसे तुमसा नहीं, तुम्हारा या तुम्हारी, हम तुम या फिर हम तुम्हारे या हम तुम्हारी, इससे रिलेटेड गाने जो भी आपकी फरमाइश के पिटारे में हो उठाकर फेंकिए, यहाँ तक पहुँचाइए। अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। बहुत सारे लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, मुकेश साहब की आवाज़ में बहुत सारे लोगों ने इस गाने को हम तक पहुँचाया है, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, जल्दी से गाना सुनाते हैं थोड़े से अंतराल के बाद।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.15 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: दादा जी और मुकेश साहब की आवाज में मिलन फिल्म का ये सुपर डुपर हिट नगमा हम तक आया है। बहुत सारे लोगों ने आज की थीम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हंसा बोरा जी, विजय जी, निर्मला जी, सोमिला मुंगुर, दिनेश पोपट जी एंड किरण जी फ्रॉम हैरो से, मुझे लग रहा है एक दो नाम और भी रह गए हैं, लेकिन मैं जैसे ही उन वो नाम हम तक पहुँचेंगे हम उन्हें भी मैंशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना आशा ताई और किशोर दा की आवाज में, लेकिन उससे पहले
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: सारे किशोर दा के फैंस के लिए है खुशखबरी, क्योंकि एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचर केतन इंद्रानी संजय एंड द 515 बैंड, और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे को 19 जून, प्रिंस रेजेंट होटल चिंगवेल एसेक्स, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: आशा दायु किशोरदा की आवाज में महल फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा सा गाना सचिन सुमित और शालिनी जी ने इस गाने को हम तक पहुंचाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और पहला गाना, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों का नाम मैं भूल सकता हूँ, और एक नाम तो आ गया है पन्ना लखानी जी। रमेश लखानी जी ने भी मिलन फिल्म के गाने के लिए, हम तुम युग युग के गाने के लिए अपना नाम शामिल कराया था इस कॉम्पिटिशन में। अगला गाना आ रहा है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, बड़ा ही प्यारा गाना है, सुनने। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद अ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
2: ऑन राग विद गोल्डन राग।

लता जी और रफी साहब की आवाज में इंतकाम फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था नीलम जी, किरण जी और कौशल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. तो भाई आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं, इस समर को भी बनाइए साउथ हॉल ट्रेवल के साथ और भी ज्यादा स्पेशल। एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक, सिटी एस्केप्स एंड मोर। हॉलीडे डील्स के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साउथ हॉल ट्रेवल, जहां पर फ्लाइट्स, होटल सब कुछ है उपलब्ध और सारी चीजें होंगी अटोल प्रोटेक्टेड। 40 साल से ज्यादा का भरोसा और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित साउथ हॉल ट्रेवल। विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल कीजिए ऑन 0208574 8410। Holiday breaks were brought to you by

0: Leica Gold, Leica Extra Podcast Update. Leica Extra Podcast Update, Episode 17, hosted by Deep Raja. मुद्दे होंगे इस बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा. Leica Extra Podcast अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Leica Gold
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner Leica Radio.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs अप्लाई.
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: Leica Extra podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
19: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, India, my Pakistan games, and a bit of Ye Yavo only for Leica Gold.
20: तो सबसे पहले LMFI के जरिए आपको हम रेट्स बता देते हैं. करेंसी रेट्स इंडियन रुपीज़ आपको 1 पाउंड के बदले मिल रहा है 128.56, पाकिस्तानी रुपीज़ 374.13, श्रीलंकन रुपीज़ 443.65, बांग्लादेशी टका 164.92 एंड 1 यूएस डॉलर 1.34.
18: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
21: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
18: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
20: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
18: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: हम तुम ये खोई खोई राहे, लता जी और मुकेश साहब की आवाज में रंगोली फिल्म का ये खूबसूरत गाना और इस फिल्म का संगीत था शंकर जयकिशन साहब की तरफ से। अब फिल्म के स्टार कास्ट की अगर बात करें तो इस फिल्म में थे किशोर कुमार साहब, विजयंती माला जी और दुर्गा खोटे जी ऑफकोर्स। लेकिन इस फिल्म में किशोर दा ने तो अपनी आवाज का जादू बिखेरा ही, साथ में साथ मुकेश साहब ने भी अपनी आवाज दी है। हालांकि ये गाना किशोर दा पे फिल्माया नहीं गया है और ये गाना हम तक पहुंचाया है जगदीश जी और रोशनी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगला गाना आ रहा है रफी साहब की आवाज़ में, थोड़ा सा सैड सॉन्ग है इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा है, लेकिन ये आवाज़ आपके दिल को ज़रूर छुएगी। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे अगले घंटे गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस भी, तो सुनते रहें कहीं मत जाएं, सुपर डुपर संडे वाली महफिल जारी है।
1: लाइका गोल्ड India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: जल्दी से स्कोर अपडेट कराते हैं आपको। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच खेला जा रहा है जहां 15.1 ओवर का खेल हो चुका है। मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा कर रही है, 148 रन 148 रन पर 5 विकेट्स का नुकसान। दीवार की तरह खड़े हैं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और आज अगले घंटे क्या होने वाला है खास, वो है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि हम तीन गाने चुन रहे हैं तीन सुरों की मल्लिकाओं के, यानी कि सुमन कल्याणपुर, आशा ताई और लता जी की आवाजों में तीन गाने होंगे आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस।
2: ये है लाइका गोल्ड।

0: रफी साहब और लता जी की आवाज में आशा फिल्म का ये गाना। और जैसे कि पहले घंटे में हम दूसरे घंटे में गोल्डन रा के हम जो कंपटीशन खेल रहे थे उसमें आखिरी गाना एक सपेरा एक लुटेरा जो हमने आपको गाना सुनाया रफी साहब की आवाज में हम तुमसे जुदा होकर, वो गाना हम तक पहुंचाया था इरफान जी, निर्मल जी, कीर्ति किरिट जी और अमिता जी ने। इन चारों का नाम मेंशन करना हम भूल गए थे, या भूल तो नहीं गए थे, यही कहेंगे कि भाई वक्त की कमी थी इसलिए हमने उनको शिफ्ट कर दिया। और इससे पहले कि हम आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस बताएं, उससे पहले हम आपको एक जानी पहचानी आवाज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं। और ये आवाज़ इस वक्त मौजूद है कैंटन में दिशा राइज के इस इवेंट पर, जहाँ पर हैं बड़ी जानी पहचानी आपकी आवाज़। कैसी हैं रूबी जी आप? हेलो रूबी जी, आप ऑन एयर हैं और हमने आपके बारे में बताया कि आप दिशा राइज के इवेंट पर हैं कैंटन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑनेस्टली इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे चटपटे चटपटे बिरयानी के टेस्टिंग सेशंस चल रहे हैं
0: जी।
1: एंड अभी पीछे ही पीछे लोग हमारे बात कर रहे हैं कि स्पेशल ऑफर्स क्या है। सो वी हैव स्पेशल ऑफर फॉर दिशा राइज, हम दिशा राइज की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं।
0: Okay.
1: जो सुप्रीम प्योर एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस है 13.99 per 10 kg, स्पेशल ऑफर फॉर दिस बैंक हॉलिडे वीकेंड। एंड अगर आपको उससे और भी थोड़ा सा यू नो डिफरेंट राइस चाहिए तो एक्स्ट्रा लॉन्ग मेगा XXL बासमती राइस, वो भी है 10 kg 15.49 में, ये प्राइस चल रहा है अभी, स्पेशल ऑफर। सनफ्लावर ऑयल भी है दिशा का जो स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, 5 liter फॉर ओनली 6.99। एंड देन वी हैव गॉट चक्की आटा एज वेल, दिशा का होल व्हीट चक्की आटा, and a special price there as well for only 7.99 10 kg, which is superb. So ye aap pe can save jo Kendall road pe main road pe hai yahan pe bhi, it was really fun because group of boys aaye jo kehte hain ki hum sab chat padhne aaye hain you know from back home India se,
0: to
1: wo get wo khana khud banate hain to unhone dekha chakha aur kaha ki maza aa gaya, so they took a whole bag. So these are you know these are live things happening just now, so it's I would say you want to get some really great rice, come to Disha rice counter which is by the rice where the rest of the rices are, and yahan pe hum kal bhi honge Disha rice ke matlab ke liye, come and get your special bags, get your special offers, and you know take advantage of this brilliant offer. Pick and save in on Kenton Road, Kenton mein, you can't miss it, just google it, you'll find it, and come on down and enjoy rice. Theek hai, back to you Anurag, we'll talk to you soon.
0: Thank you so much.
1: Bye.
0: Thank you. तो ये थी रूबी जी, लेकिन हम आपको बताएंगे अब दिशा राइस तो आपको खाना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि रोटी बनानी आती नहीं है और जब भी मौका मिलता है तो बस राइस होता है सहारा। और हम आपको अब बताने जा रहे हैं आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। आर यू रेडी?
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो वक्त जैसे कि बीत चुका है इसलिए हम आपको कायदे प्लस कानून नहीं बताएंगे, जो लोग इस खेल को जानते हैं उन्हें हम जल्दी से बताते हैं। ए बी एंड सी तीन ऑप्शन आपके सामने, जिन्हें आपको वोट की तरह कास्ट करना है, जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का गोल्डन राग। ऑप्शन ए है दिल एक मंदिर, टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दिल एक मंदिर का, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ें। जैसा कि मैंने कहा था आपको, तीन दिग्गज फीमेल सिंगर्स की आवाज़ें आज हम शामिल कर रहे हैं गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस में। ऑप्शन बी है तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, फिल्म का नाम है मेरा साया, लता जी की सोलो आवाज़ में ये गाना है। और ऑप्शन सी है आशा ताई की खूबसूरत आवाज़ में दो लफ्ज़ों की है ये कहानी, द ग्रेट कैमलर फिल्म से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दिल एक मंदिर का टाइटल ट्रैक रवि साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, ऑप्शन बी तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा लता जी की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म मेरा साया, एंड ऑप्शन सी दो लफ्ज़ों की है ये कहानी आशा ताई की आवाज़ में, साथ में अमिताभ जी भी, बच्चन साहब भी थोड़ा थोड़ा सा बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर, आप भी गैम्बलिंग के इस खेल में हो जाइए शामिल और अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दीजिए।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Rafi sahab ki awaaz mein behad hi shandar gana, Pyar Kiya To Darna Kya film se tha. Aur इसके साथ एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है, लेकिन मिस मत करें भाई, क्योंकि वोटिंग करने का समय बहुत कम बचा हुआ है. ऑप्शन ए है दिल एक मंदिर फिल्म का टाइटल ट्रॉक रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में. जैसे कि आज हमने बताया कि हम तीनों गाने अलग अलग लेजेंड फीमेल सिंगर्स को शामिल करते हुए रख रहे हैं. ऑप्शन बी है तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ रहेगा, लता जी की आवाज़ में मेरा साया फिल्म का ये गाना है. और ऑप्शन सी है लता जी की आवाज़ में दो लफ्जों की है ये कहानी फ्रॉम द फिल्म द ग्रेट गैम्बलर. वोटिंग लाइंस ओपन है भाई, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Save up to 50% in the Dunelm sale.
4: Go on, get some savings in your life with brilliant offers on thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and so much more.
3: Sale.
4: And breathe. Save up to 50% in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
12: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T's and C's apply.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
17: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
20: Feel the fun. PlayOjo.
21: 18 plus, gamble aware.
22: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
23: Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
24: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई किसका नहीं जिसका रास्ता आप देख रहे हैं, यानी कि आज जिस गोल्डन राग को आप सुनना चाहते हैं, जिसका रास्ता आप देख रहे हैं, वो चुना जा चुका है। इसीलिए अब हो चुके हैं आज के लिए वोटिंग लाइंस बंद और सरप्राइज आपके लिए है रेडी। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.46 पाकिस्तानी रुपीस 374.14 श्रीलंकन रुपीस 455.55 बांग्लादेशी टका 165 एंड 1 US डॉलर 1.34.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.94 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey, this is
5: Like a Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: To Rajasthan Royals in Mumbai, ये मैच हार गई है और दूसरा मैच शुरू हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान। 70 रन पर एक विकेट का नुकसान, दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करते हुए।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
1: पेश है आपके लिए आज का गोल्डन राग।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: लता जी की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये गाना, ये सॉन्ग मेरा साया साथ होगा, जिसे आपने सबसे ज्यादा वोट देकर बनाया है आज का गोल्डन राग। वैसे आपको एक चीज और बताता हूँ कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस स्लॉट में जो मैं आपको गाने तीन ऑप्शंस बताता हूँ, उसमें से एक गाना मुझे भी चुनकर पहले से ही रखना होता है, और इसके बाद डिसाइड करते हैं आपके कीमती वोट्स कि किस गाने को उस गाने से रिप्लेस करना है। लेकिन यकीन मानिए, 10 में 8 बार आपका अनुराग सही होता है, और इसलिए आज ये गाना मैंने पहले से ही इस स्लॉट में रख के रखा था, जिसे आपने भारी बहुमत के साथ विजयी बनाया है। चलिए जल्दी से लेते हैं नाम। संतोष जी, नीता जोशी जी, अमित पटेल जी, अर्जुन साहब, हना जी, अमर, फरीदा गुलाम अली जी, विजय घुनोवा साहब, जगदीश जी, अयूब चौहान भाई, अनीता जी, महेंद्र, सुमित चौरासिया, पंकज वर्मा, केतन, सालिम अख्तर एंड सुगंधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को वोट देकर आज का गोल्डन राग बनाने के लिए। वैसे सेकेंड हाइएस्ट वोट मिले थे दिल एक मंदिर को, रवि साहब सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में था। लेकिन भाई चुनना तो एक ही गाने को है, कई बार ऐसा होता है कि टाई हो जाता है, लेकिन नहीं, आज के लिए सिर्फ एक ही गाना। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, कल होगी नहीं अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: Good afternoon. 13 minutes after 4 o'clock, you are listening to Laika Radio Network के जरिए Laika Gold पर भी सुन रहे हैं और जहां भी बैठे हैं, जिस एरिया में बैठे हैं, वहां की फ्रीक्वेंसी पर भी आप सुन पाते हैं. टेलीफोन ऐप के जरिए सुने या ऑनलाइन सुने, जहां भी बैठे सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूं कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. If you're not feeling too well, get well soon. If you're feeling a bit down, तो cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए. आपके मन को भा जाएँ तो मुझे आपकी तरफ से इशारा चाहिए. और इशारा कैसे होता है? यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कहाँ बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि कौन से कान किसने मुझे उधार दिए हैं. वेल, क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट का मैच भी देख रहे होंगे, लेकिन कान तो मेरी तरफ किए जा सकते हैं, आँखें वहाँ टेलीविज़न पर रह सकती हैं. राइट, जो मेरे साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनके मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, तह दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ. इसी तरह से सुनते रहिएगा. हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, गर्मी अचानक एकदम इतनी ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी ज़रूर पीते रहिए. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. ओके, ये छोटी सी हिदायत दे रही हूँ, एक सलाह दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो मुस्कुरा दीजिएगा. दैट्स इट. बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, दोनों ही गीत बड़े ज़बरदस्त थे. पहला गीत फिल्म बेटा से मैंने चुना था. और बेटा से क्यों चुना था गीत, बेटा का गीत मैंने क्यों प्ले किया जानते हैं? क्योंकि ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था, लेकिन सुनने में यही आया कि फिल्म में ये नहीं था. क्या आपने फिल्म बेटा देखी है? ये गाना था, पिक्चराइज हुआ था माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर पर या नहीं? आपने फिल्म में देखा था या नहीं देखा था? वो धक धक करने वाला तो गाना सभी ने देखा है. यस, मुझे मालूम है, वो तो था फॉर श्योर. बट दिस वन आई एम नॉट टू श्योर कि मैंने देखा था या नहीं देखा था. आपने देखा था तो ठीक है, नहीं देखा था तो फिर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि ये गाना फिल्म में नहीं था. राइट, और दूसरा गीत क्यों मैंने शामिल किया वो भी जान लीजिए. पहले गीत में वर्ड थे धड़कने, सांसें, जवानी, जिंदगानी आपकी, आपने चाहा हमें, मेहरबानी आपकी. ये मेरी तरफ से गीत था मेरे सभी सुनने वालों के नाम. और अब इसमें से पहला वर्ड ही मैंने चुन लिया धड़कन, तो धड़कन पर गाना मैंने आप तक पहुंचा दिया. धक धक से धड़कना सिखा दे. सो जिस जिस को ये गाना बहुत पसंद आया वो मुझे बता सकते हैं. इसे मैंने फिल्म आशा से चुना था. 1980 में आई थी ये फिल्म, जितेंद्र, रीना रॉय एंड रमेश्वरी थी एक एक्ट्रेस, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत और बेटा का संगीत भी बड़ा लाजवाब था. और बेटा को तो अवार्ड्स भी बहुत मिले थे, आप जानते हैं, बेस्ट एक्टर अनिल कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरुणा ईरानी. ओह, बड़ा ज़बरदस्त रोल था अरुणा ईरानी का, कैसे ब्रेन वॉश करती है अपने बेटे का. एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल, उन्हें मिला था धक धक करने लगा उस गीत के लिए. बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था सरोज खान को फॉर धक धक करने लगा. और भी बहुत सारी नॉमिनेशंस थी, बस लिस्ट बहुत लंबी है, यहीं पर मैं विराम देती हूँ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर इनके जरिए आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया, तो 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड टुडे कैन गेट यू कितने पैसे? 128 रुपीस एंड 15 पैसास. सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI Yono ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, यही नहीं, also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. So terms and conditions apply, पर इसका फायदा जरूर उठाइए.
1: Windia UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 02- 0 3 9 6

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: दूर दूर तक प्रोग्राम सुना जा रहा है. थैंक यू एवर सो मच कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने. आपने मुझे मुमताज़ अहमद मुगल, पाकिस्तान जेलम से मैसेज लिखा है और इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम, ये जानकर बहुत अच्छा लगा. फरीदा गुलाम अली जी, मृदु जी, आप सबके मैसेजेस मिल गए हैं. हना एंड संतोष इन हैरो, और आप कौन है? वीना जी, थैंक यू. एंड आपका नाम भी इसमें लिखा नहीं है. राजेश जी, आपका भी मैसेज मिल गया. विनी विनोद, वरुण जी, जैस्मिन, जगदीश जी, बुशी, हंसा वोरा जी, दिनेश पोपट जी, सहर, विमल रायन, अर्जुन जी, निर्मला जी, उल्लास इन टोरंटो, दिव्या इन हैरो, थैंक यू. ज्योति गरीश शाह, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स. और अब अगला गीत हो जाए. कौन सा वर्ड है, कौन सा गीत अगला होगा? जवानी, धड़कने सांसें, जवानी जिंदगानी, आपकी आपने चाहा हमें मेहरबानी आपकी. तो ये गीत मैं सब आपके नाम ही कर रही हूँ. वैसे दो गाने थे जिनमें से चुनना था एक गीत, और मैंने जो गीत चुना है वो आ रहा है आपके लिए.
0: Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: ट्यून से समझ गए होंगे कौन सा गीत है. लता मंगेशकर एंड रफी साहब की आवाजें. फिल्म का नाम था कारवां. 71 में आई थी ये फिल्म. आज वैसे बहुत से बर्थडेज भी हैं और उनकी बर्थडेज भी मनाएंगे, बर्थ एनिवर्सरी भी मनाएंगे. थोड़ा सा इंतजार, मे बी इन द नेक्स्ट आवर बजरू साहब को याद करेंगे हम.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: बहुत अरसे के बाद मैंने ये गाना प्ले किया और मुझे उम्मीद है कि आपने भी खूब इंजॉय किया होगा और ऐसे मौसम में साथ में अगर बॉडी भी शेक कर ली होगी तो और भी मज़ा आया होगा। वैसे स्टूडियो में बैठे बैठे सीट पर ही हम थोड़ा थोड़ा हिल लेते हैं। यस, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप बैठे बैठे भी अपनी टांगों को ऊपर नीचे करते रहते हैं? इससे मसल्स स्ट्रांग होती हैं एंड इट्स गुड फॉर यू। तो अगर आपके नीज़ में भी पेन है या लेग्स में पेन होती है तो आप बैठे बैठे भी ये एक्सरसाइज किया करें, आपके लिए बहुत अच्छी है। देखिए, साथ साथ छोटी छोटी बातें सरिता आपको बता ही देती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? दिनेश पोपट जी, आप भी आ गए हैं, थैंक यू। और अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं एंड फिर कौन सा गीत आप तक पहुँचाएँ। एक तो कम जिंदगानी, ये गाना धर्म अधिकार का गीत है जो आ रहा है नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है। आइए ज़रा ये सुन ले।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax, and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 99 1234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
4: ये है Like a Gold 10:35 AM
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya chhe Sakhna Rejo Husband ji Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860-280655 Sakhna Rejo Husband ji.
8: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मठ भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
16: Add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
15: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
19: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane. Get inspired by morning mantra Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: भी वक्त कहाँ मिलता है। और जिंदगानी पर ये गीत सुन लिया आपने, पर आपने लिखकर भेजे दो लफ्ज़ों की है ये जिंदगानी। ये गीत सुनना चाहा था अमित, लेकिन आपका मैसेज मुझे लेट मिला। विजय गनोवा जी थैंक यू। और इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं भाई, कनाडा से ये मैसेज आया है, विनीपेग मैनिटोबा कनाडा में सुन रहे हैं बिंदर पाल जी। बिंदर पाल जी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, be a pound in your pocket can get you today at this moment. Kya kya rate? Indian rupees mein 128.48, Pakistani rupees 374.6, Sri Lankan rupee 455.59, Bangladeshi taka 165.1, Afghani 85.73 and US dollars 1.34.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right, gold ka rate hai is worth £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. ये है लाइका गोल्ड। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भी आज तो अर्लियर ऑन भी मैच हो रहा था और थोड़ा सा मैंने देखा भी राजस्थान रॉयल्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच मैच चल रहा था, जो राजस्थान रॉयल्स वालों ने जीत लिया बाय 30 runs। एंड इस वक्त मैच चल रहा है ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स दे चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो दिल्ली कैपिटल्स ने बना लिए 181 runs और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए इन 18.5 overs.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Laika Gold.
0: One of my favorites. Aapko bhi pasand aayega.

0: What a beautiful song. दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे. खामोशी का गाना 1996 की खामोशी से मैंने चुना था उस गीत को, और दूसरा गीत था कयामत से, कयामत फिल्म से. और इन दोनों गीतों को चूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को, जिनका जन्म तो हुआ 1 अक्टूबर 1919 में और 24th ऑफ मे आज ही के दिन 2000 में, जी हाँ, ये 2000 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. एंड एक भारतीय उर्दू शायर थे, सभी जानते हैं आप, एंड हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक थे मजरू सुल्तानपुरी जी. ही रोट लिरिक्स फॉर मैनी हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक्स एंड बॉलीवुड में गीतकार के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध भी हुए. उन्होंने अपनी रचनाओं के ज़रिए देश, समाज और साहित्य को नई दिशा देने का काम किया. वो इस देश के ऐसे तरक्की पसंद शायर थे जिनकी वजह से उर्दू को नया मुकाम हासिल हुआ. उनकी मशहूर पंक्तियों में आपने ज़रूर पहले सुनी भी होंगी और याद भी होंगी आपको, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग पास आते गए और कारवां बनता गया, इसका जिक्र बहुत दफ़ा होता है. बहुत से शायर भी करते हैं इस पंक्ति का जिक्र. और इन हिज करियर स्पैनिंग ऑफ 6 decades 60 साल तक उन्होंने काम किया एंड ही वर्कड विद मैनी म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ही वन द फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड इन 1965. जानते हैं कौन सा गीत था वो? फिल्म का नाम था दोस्ती. और उसका कौन सा गीत हो सकता है जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का? वैसे तो उस फिल्म के सारे गाने ही बड़े मशहूर हुए थे और सारे गाने बहुत मीनिंगफुल थे, लेकिन उस गीत के लिए ख़ास तौर पर उन्हें अवार्ड मिला था. अब वो वाला गीत मैं प्रोग्राम में शामिल इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल ही हमारे यहाँ से आपने सुना है और फिर हम बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करते हैं. तो दोस्ती के दो गीत मैंने चुने हैं. राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है. और दूसरा गीत है जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे. इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है? ए राही मनवा और बी जाने वालों जरा. जो भी गीत आपको ज़्यादा पसंद है उसके लिए आप वोट दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कौन सा गीत आज के प्रोग्राम में आप सुनना पसंद करेंगे. उससे पहले मैं बहुत सारे दूसरे काम कर रही हूँ और ये तो जानते ही हैं, प्रोग्राम का दूसरा भाग शुरू हो चुका है एंड इट्स नियरली 17 minutes after 5 o'clock. Good evening. If you have just joined me.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, B. Your £1 in British sterling can get you today 128 rupees and 15 paisas. And you can send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Yahi nahi, aur bhi kuch hai. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. So, der kis baat ki hai? कीजिए ये काम. टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउड.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Save up to 50% in the Dunelm sale.
3: Go on, get some savings in your life with brilliant offers on thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and so much more.
2: Sale.
3: And breathe. Save up to 50% in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
4: Like a Gold.
1: The wait is now over. The King of Melody. Go
5: Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
6: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
5: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
6: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
5: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhi zyada votes isi geet ko mile the, isliye maine program mein ye wala gana shamil kiya. Rani ji from Slava, Santosh from Hero, Vatsla ji, Rajesh ji, Hana ji. Rajesh ji, actually aapne ye dusra wala geet chaha tha ki main program mein shamil karun. Farida ji, आपने भी दूसरा गीत चाहा था और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है. थैंक यू एवर सो मच, बड़े प्यार से सुनते हैं आप और फिर हमें बताते भी हैं. यहीं मैं आपको कुछ याद दिलाने जा रही हूँ कि अगर आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो स्पेशल म्यूज़िकल नाइट आप ही के लिए है, जिसे लेकर आ रहे हैं केतन, इंद्रानी एंड संजय एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून को एट द प्रिंस रेजेंट होटल, चिगवेल में है ये, एसेक्स में. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका गोल्ड रेडियो.
1: ये है
3: लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
2: मजू सुल्तानपुरी जी ने ही लिखे थे गीत, जो जीता वही सिकंदर फिल्म के गाने, तो उन्हीं में से मैंने ये वाला गाना चुना है. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा. पहला नशा.

0: our sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: जी, गीत आपने सुन लिया, बहुत प्यारा गीत था। बहुत से ऐसे गीत हैं जो शामिल तो करना चाह रही हूँ लेकिन वक्त नहीं इजाज़त देगा। मजरू सुल्तानपुरी जी ने नासिर हुसैन के साथ बहुत काम किया, उनकी पहली जो कोलैबोरेशन थी वो पेइंग गेस्ट थी, उससे उन्होंने काम शुरू किया था। उसके अलावा तुमसा नहीं देखा, दिल देखे देखो, फिर वही दिल आया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने एंड प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, बहुत लंबी लिस्ट है। सो जितने भी गीत हो सकेगा मैं टूर प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी।
2: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold. Like a Extra podcast update.
1: जी हाँ, इस हफ्ते आप डोमेस्टिक वायलेंस का नया एपिसोड देख सकते हैं, होस्टेड बाय दीप राजा। इस डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज, आप क्या सोचते हैं? अगर आप या फिर मेंटल एंड हेल्थ ट्रॉमा के सर्वाइवर्स के बारे में भी जान सकते हैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए, तो पुराने भी आप एपिसोड्स आप देख सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर।
1: इस गीत को भी अपनी कलम से लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।

मजरू सुल्तानपुरी साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था इन 1993। बहुत से यादगार गीत हैं, आने वाले दिनों में भी मैं ये गीत आप तक पहुंचाती रहूंगी।

0: इस गीत की और भी वर्जन्स हैं, लेकिन मैंने परवीन सुल्ताना की आवाज़ इसलिए चुनी कि आज इनका भी बर्थडे है और शी वाज बोर्न ऑन 24th of May इन 1950 एंड शी इज़ एन इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, पटियाला घराना से ये बिलोंग करती है एंड शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1976, पद्म भूषण इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी इन 1998. वैसे तो क्लासिकल सिंगर हैं लेकिन इन्होंने कुछ एक फिल्मी गाने गाए, जैसे कि ये गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किया. ऐसे ही पाकीज़ा में भी एक ठुमरी थी, कौन गली गयो शाम, अगर आपको याद हो. देन दो बूंद पानी के लिए भी गाया, परवाना के लिए, मुक्ति असम, खोज 1971 की फिल्म थी, रजिया सुल्ताना में शुभ घड़ी आई रे, वो गीत भी इन्होंने गाया था. तो आज हम इन्हें भी बहुत बहुत बधाई देते हैं. और ये गीत भी मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था एंड राजेश रोशन जी ने संगीतबद्ध किया. राजेश रोशन जी का भी बर्थडे है आज ही, तो नेक्स्ट आवर में कुछ गीत उनकी फिल्मों के.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.51, Pakistani rupees 373.94, Sri Lankan rupees 455.59, Bangladeshi taka 164.85, Afghanis 85.67 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: भाई गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 107 pounds and 94 pence का एक ग्राम सोना.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
4: ये है लाइका गोल्ड.
0: सो जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट आवर में मैं राजेश रोशन जी की फिल्मों के कुछ एक गीत शामिल करूंगी. डू यू रिमेंबर एनी फिल्म जिसमें शमी कपूर साहब थे और राजेश रोशन जी का संगीत था? अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइएगा. देन आई विल प्ले दैट सॉन्ग अंडर आर्टिस्ट ऑफ द वीक में भी. वैसे एक फिल्म आई थी मामा भतीजा, उसमें शमी कपूर साहब थे, पर उस पर एक उस फिल्म में एक गाना भी था, उन पर पिक्चराइज हुआ और संगीत भी था राजेश रोशन जी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट सॉन्ग. पर कोई बात नहीं, इफ़ यू डू रिमेंबर लेट मी नो. और प्रोग्राम का इस आवर का लास्ट गाना होगा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा एंड मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था.
5: Location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line. किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
12: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
11: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने, पहला गीत था फिल्म दस्तक से 1996 की फिल्म और दूसरा गीत आखिर क्यों फिल्म से 1985 का की ये फिल्म थी। और दोनों के दोनों गीत कंपोज किए थे राजेश रोशन जी ने। राजेश रोशन जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। बहुत सी इतनी खूबसूरत फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया और इनका संगीत अलग सा है, अच्छा लगता है और इनके गीतों को आप भी गुनगुनाते हैं। एंड इन्होंने किशोरदास से लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब, अमित कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले सभी ने इनके गीत गाए हैं। और ही शॉट इनको शोहरत जो मिली थी वो 1974 की फिल्म कुंवारा बाप से मिली थी। आपको याद है कुंवारा बाप का कोई भी गाना? अगर याद है तो मुझे बताइए। डू यू रिमेम्बर, आई थिंक चंदा वो चंदा किसने चुराई, यस डू यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग और डू यू वॉन्ट टू लिसन टू दिस सॉन्ग? अगर हाँ तो मुझे जल्दी से इशारा कर दीजिए। देन जूली के गाने, और जूली के लिए उन्हें फिल्म फेयर म्यूजिक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। एंड कुंवारा बाप 1974 में आई थी। इसके अलावा देश परदेश, मनपसंद, लूट मार, दूसरा आदमी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, एंड एक ही रास्ता, स्वर्ग नरक, इकरार, बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया। सो कुछ ही गीत मैंने लाइनअप किए हुए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर उन गीतों को पसंद करेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: But your £1 in British sterling can get you today up to 28 rupees and 15 paisas. Aur agar aap SBI Yono app ke zariye ya branch mein jaakar paise transfer karate hain till by end of June, to every day aapko ek voucher mil sakta hai for £75 when you spend £1,000 every day. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya chhe. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Video Rama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रह जो हस्बैंड जी।
7: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
8: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
8: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
8: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
7: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
8: बुक योर टेबल टुडे।
9: राम कृष्ण हरी यूके तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव तिकीट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.com.

0: T's and C's apply.
1: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

1957 की फिल्म थी, विंटेज गोल्ड प्रोग्राम नहीं है, मेरे बाद आने वाली हैं सैंडी शाह, उनके साथ ऐसे बहुत सारे गीत आप सुनेंगे। शमी कपूर साहब को हमने याद किया, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शमी कपूर साहब। बता दूं तुमसा नहीं देखा 1957 की फिल्म थी जो नासिर हुसैन साहब ने बनाई थी। इस फिल्म में पहले शमी कपूर नहीं थे, पहले देवानंद को साइन किया गया था, लेकिन देवानंद ने मना कर दिया था, तो शमी कपूर साहब को ये फिल्म मिली थी। और जब इसकी पब्लिसिटी भी हुई तो अमिता जो कि इसकी हीरोइन थी उसी पर पब्लिसिटी हुई थी, शमी कपूर तो फिर रातों रात बन गए थे, यस स्टार बन गए थे। और ये

0: वाला गीत सिर्फ इस फिल्म का साहिर साहब ने लिखा था, बाकी के सारे गाने मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी एंड किशोरदा की आवाज़ों में आपने फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत सुना। इस फिल्म के सारे ही गीत बड़े खूबसूरत थे और इन्हें कंपोज किया राजेश रोशन जी ने, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। इसके अलावा दस्तक, कहना क्या कहना,
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, Karan Arjun aur aisi bahut sari filmon mein unhone sangeet diya hai. Kaho Na Pyar Hai ko kaise bhul sakte hain. Chaliye ab aage badh le.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: किशोरदा एंड अलका याग्निक की आवाज़ें आपने सुनी। इस गीत में कामचोर फिल्म का नाम था। एंड बता दूं कि कोई मिल गया 2003 की फिल्म थी जिसके लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। एंड कहो ना प्यार है 2000 की फिल्म थी, इसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। जब कोई बात बिगड़ जाए वो गीत तो जैसे हर सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनती है, तो वो गीत मैं आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रही हूँ। देन पापा कहते हैं मेरे फेवरेट फिल्म थी और इसका संगीत भी मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। करण अर्जुन के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड अगेन फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। एंड खून भरी मांग, वो भी बहुत प्यारे गीत थे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, वो गीत मैंने क्यों किया हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राइट, बता दें कि इस समर आप मेमोरेबल हॉलीडेज ले सकते हैं विद साउथ ऑल ट्रैवल। एक्सप्लोर बीच ब्रेक, सिटीज एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। Trusted for over 40 years and winners of British Travel Award. Visit South Hall Travel or call 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: Aa September, Paris ma ithihas lakhai rahyo chhe.
13: BAPS mandir no opening ane Star Tours tamne lai jai rahyo chhe aa pavitra yatra par.
12: Europe na 3-9 divas na tours.
13: France, Switzerland, Italy ane Germany saathe.
12: Darshan pan ane Europe pan.
13: Seats jaldi bharai rahi chhe. Aaj ij book karo Star Tours saathe.
12: Call 0208900-2323. The Star Tours.
13: Travel once and you will travel again and again.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
17: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at likeamedia.co.uk.
18: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दुनिया चाहे बदलती रहे, हम नहीं बदलेंगे। हम आपकी सेवा में इसी तरह से आते रहेंगे और मैं भी चाहती हूँ कि इसी तरह से आपके मैसेजेस ड्रॉप होते रहें, मुझ तक पहुँचते रहें और आप इंजॉय करते रहें प्रोग्राम को। मिसेस शेख आप भी सुनिए तोची जी, थैंक यू। मिसेस शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहीर साहब आप अभी अभी आए हैं मुंबई में प्रोग्राम, कराची में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, थैंक यू एवर सो मच।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today 128.52 Indian rupees, Pakistani rupees 373.85, Sri Lankan rupee 455.53, Bangladeshi taka 164.75, Afghani is 85.62 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £107.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली, ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली proud to be the official partner of England cricket.
0: The earlier on match tha Rajasthan Royals and Mumbai Indians mein, Rajasthan Royals won by 30 runs and aaj dusra match Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders ke beech abhi chal raha hai. Delhi Capitals ne target diya 204 runs ka and Kolkata Knight Riders ne bana liye 154 runs with the loss of 8 wickets. They've got 16 balls and 50 runs to make.
1: India cricket score update were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है
4: Leica Gold.
2: Leica Gold.
0: जी हाँ, आप लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए लाइका गोल्ड इस वक्त यहाँ लंदन में सुन रहे हैं और मैनचेस्टर में सुना जा रहा है, मिडलैंड्स में भी ये प्रोग्राम सुना जा रहा था। अब मेरे जाने का वक्त है, जाते जाते एक और गीत मैंने क्यू किया हुआ है एंड दैट इज़ फ्रॉम 1999 की फिल्म थी लावारिस और इसका संगीत भी राजेश रोशन जी ने दिया। राजेश रोशन जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। जीत गांगुली हु इज़ ऑल्सो अ म्यूज़िक डायरेक्टर, ही इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एंड राज एंड स्मिता पाटिल के बेटे आर्यन का भी आज ही बर्थडे है। सभी को बहुत बहुत मुबारक। इफ यू आर शेयरिंग योर बर्थडे टुडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल बाली जी की सीट पर।
5: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PR. PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London.
12: Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ, कोई पता चला?
16: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
17: चारू, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र।
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
18: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
19: લંડન વોલ્યુમ વધારી દો આ 20 જૂન બોલિવૂડની પાવરફુલ વોઇસ ભૂમિ ત્રિવેદી આવી રહી છે લંડન રામ ચાહે લીલા ચાહે લીલા ચાહે ધમાકેદાર મ્યુઝિકલ નાઇટ માટે રેડી થઈ જાઓ ઉડી ઉડી જા Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 PM to 11 PM. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Leica Radio.
20: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
21: એક ઐતિહાસિક અને દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
19: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
22: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
23: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
24: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
25: ये है
26: लाइका गोल्ड
25: सरिता सबोव.

0: Vintage Gold every weekend with Sandy Shah.
1: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.

0: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Laika Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
3: Two businesses,
4: same town,
3: same service.
4: One appears on page one of Google,
3: the other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: Land in. Volume vadhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi. Aavi rahi chhe London. Ram chahe Leela chahe Leela chahe. Dhamakedar musical night party ready thai jao. Udi udi jai. Udi udi. Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough. 6 p.m. to 11 p.m. टिकट्स बुक करो srevents.com पर। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
9: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट आश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
3: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

है गंगाराम हो मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम, हम तेरे हैं गुलाम, हम तेरे हैं गुलाम।